आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 6 और आज के एपिसोड का शीर्षक है जज्बात। इस कार्यक्रम को लिखा और प्रस्तुत करेंगे आरजे किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, निर्देशन भारत सोपोरी का।
2: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। स्वागत है आपका एक खास सफर में, जहां अल्फाज और सुर मिलकर दिल के जज्बात को बेहतरीन तरीके से बयां करेंगे। ये है रेट्रो का आज का अंग जज्बात स्पेशल। जज्बात वो तोहफे हैं जो हमें इंसान बनाते हैं, और वो धड़कन जो इन जज्बात को और गहराई देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये जज्बात भरा सफर। जज्बात दिल के लिख रही हूँ, कागज पे खुद को रख रही हूँ।

0: बच बच के चलना हुजूर।
1: ये जज्बात ही है जो हमारी जिंदगी को गहराई देते हैं। तो दोस्तों, जज्बात का ये सफर यही आकर अपने अंजाम पर पहुंचा। जज्बात हमेशा जिंदा रखने चाहिए, क्योंकि ये वही जज्बात है जो जिंदगी के मायने देते हैं।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 6। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था जज्बात। इस कार्यक्रम को लिखा और प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

यो छ एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता हम सफर।

0: देना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ वफाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
1: नमस्कार, आज का जो ललवाक है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इनसाइट से भरा हुआ ललवाक है ललित का, और हमारे आज के इस जीवन के दृष्टिकोण में इसकी बड़ी महत्वता है। कश्मीरी में ये ललवाक बोलता हूँ, नावद बरस अटगंड ड्योलगोम, नावद बरस अटगंड ड्योलगोम, देहकान हुलगोम, हाय क्या क्यों गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यों, गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यों, हलरस खोल गोम, हाय क्या क्यों। अब ये देखिए, इसमें नावद बरस अटगंड ड्योलगोम की बात करती है। नावद मतलब कश्मीरी में जैसे मिठाई कहते हैं, मीठा कहते हैं, मिश्री कहते हैं, तो ललदेत मिश्री को का एक मेटाफर यूज करती है। वो कहती है कि जो दुनिया की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये दुनिया की इच्छाएं आकांक्षाएं सुख जिसका हम भोग करना चाहते हैं मिठाई के समान है, और ये मिठाई की लालसा हम सबको होती है, क्योंकि मीठे की एक बार आदत लग जाए तो आदमी का मन हमेशा अतृप्त रहता है और मीठा चाहता है, क्योंकि पहले ये मीठा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये मीठा और आना शुरू कर देता है तो ये जीवन में एक बोझ के समान हो जाता है। हमें पता भी नहीं लगता ये बोझ कब बन चुका होता है, क्योंकि लालसा ने हमारी आंखें अंधी कर दी होती है, हमें दिखता ही नहीं है। हम हर चीज चाहते हैं, ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले, एक चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज मिलनी चाहिए। तो ललदेत इन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को, इन इच्छाओं को इस मिठास से जोड़ती है। वो कहती है कि ये जो इच्छाएं हैं ये बड़ी बड़ा बोझ क्रिएट कर देती है हमारे ऊपर, और फिर कहती है कि देह कान होल गोम भाई क्या कि हो, मतलब फिर ये बोझा इतना भारी हो जाता है हम पर कि जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, जिस चीज के लिए मैं इस जीवन में आया हूँ, वो चीज मुड़ना शुरू हो जाती है, वो चीज उस भार के नीचे दब जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और फिर कहती है गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यों, गुरु ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि तो उस दिशा की ओर चल, उस परमात्मा को खोजने चल। मुझे वो दिशा अच्छी तो लगी, लेकिन उसको करने के लिए मुझे इस दुनिया से अपने आप को खींचना है बाहर। अब दुनिया से अपने आप को खींचना बाहर किसी को अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा तकलीफ देह है, ये सबके लिए बड़ा बड़ा कष्टकारी होता है। तो इसलिए फिर कहती है फलरोस खोल गोम हाय क्या कि हो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं इस दिशा में जाऊं या मैं इस दिशा में रहूं, मैं छोड़ू या पकड़े रखूं। तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है, लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो गए।

जो दी गया फरीब, दी गया जख्मों की बारिश, फिर जिंदगी को संभाल न सके। आज मेरी मौसम जर्द हो गई।

और दौरानी सफर छूट गए मेरे यार, रास्ते गुम हो गए, इसीलिए शायद तुम हमारे ना हो सके। वक्त बेवक्त तुम याद आते रहे, मेरे अपनों की तरह तुम भी मेरी इबादत में शामिल रहे और मैं सजदों में तुम्ही से मुखातिब रहा, यूं ही बेवक्त।

0: खबरों में कोई गुजरता है हर पल मेरे पास से, मेरे करीब से। धुंधला धुंधला चेहरा दिखाई देता है और चलने की आहट सुनाई देती है। इन पैरों को छूने की हल्की जुम्बिश महसूस होती है। कोई तो है जो सुनता है मेरे दर्द को।
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी।

ख्वाब थी पर रह गई अधूरी, हसरतों की मीनार दब गई सीनों में, अब पहले जैसे जज्बात कहां, पहले जैसी मुलाकातें कहां, पहले जैसा चांद भी तो अब कहां उगता है आकाश में। ना पहले जैसी तारों की बारात, उनकी टिमटिमाहट नजर आती है, और ना ही तुम्हारी जानिब से खुशबू मेरे पास से गुजरती है। अब रुक गए काफिले मोहब्बतों के, यूं ही तुम हमारी तन्हाई में याद आते रहे शायद।

ख्वाब बनकर कोई आएगा, मेरा अतीत दोहराएगा, बीती बात याद दिलाएगा, मुझे खुद से मेरी पहचान कराएगा। मुद्दती हुई कोई ख्वाब में आया नहीं, शायद बरसों से मैं सोया नहीं, इंतजार में बीत गए साल हर साल। ख्वाब बनकर कोई आएगा, मेरा हाथ जरूर थामेगा, मुझे ले जाएगा, अपने साथ बिठाएगा अपने पास।

आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? फिल्मी गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे इजाजत। नमस्ते।

हो चकाचक फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक कश्यप आपका स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 4 में हम हर बार बात करते हैं किसी भी एक पुरानी फिल्म के बारे में और जानते हैं उनके अनकहे किस्से और सुनते हैं उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे ऐसी फिल्म के बारे में जिसके गीत और किस्से आपको खूब आनंद देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1971 में बनी फिल्म आनंद के बारे में। फिल्म 12 मार्च 1971 को रिलीज हुई थी और उस समय की सुपरहिट फिल्म भी रही। फिल्म आनंद में लीड रोल में थे उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी और स्पोर्टिंग एक्टर थे महानायक अमिताभ बच्चन जी। वैसे उस समय किसे पता था, इस फिल्म में स्पोर्टिंग रोल में नजर आए अमिताभ बच्चन एक समय आने पर अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के एंग्री यंग मैन और आने वाली सदियों के महानायक कहलाए जाएंगे। और इस फिल्म के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक प्यारा सा गीत और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और लौट कर बताएंगे आपको इस फिल्म के अनकहे किस्से।
1: मैंने

उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना और इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद, अब भी इसकी कहानी, इसके पात्र, इसके गाने सभी के दिलों में बिल्कुल ताजा है। इस फिल्म से लोगों ने जिंदगी के हर लम्हे को खुलकर जीना सिखा दिया था। इस फिल्म को देखकर जब लोग थिएटर से निकलते तो सभी की आंखें नम होती थी और जहन में सिर्फ एक ही बात होती थी, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और इसी से जुड़ा मन्ना डे का गाना जिंदगी कैसी है पहली को शुरुआती क्रेडिट के साथ बैकग्राउंड में बजाया जाना था और उस समय बैकग्राउंड स्कोर के हिस्सों के रूप में इस्तेमाल किए गए गाने फ्लॉप होने के लिए जाने जाते थे। जब राजेश खन्ना ने यह गाना सुना, उन्होंने ऋषि दास से पूछा, आप इसे पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? फिर यह गाना राजेश खन्ना पर जुहू बीच पर फिल्माया गया और सुपरहिट भी हो गया। आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का और लौटकर आपको बताते हैं कैसे यह रोल राजेश खन्ना जी को मिला और कौन थे वो कपूर खानदान के स्टार जिन्हें आनंद फिल्म का किरदार ऑफर हुआ था। सुनते रहें FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। और कार्यक्रम चल रहा है फिल्मी किस्से एपिसोड 4 दीपक कश्यप के साथ। और बात कर रहे थे कि कौन थे वो कपूर खानदान के स्टार जिन्हें फिल्म आनंद का किरदार ऑफर हुआ था। ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म में पहले राज कपूर के भाई शशि कपूर को आनंद के किरदार के लिए चाहते थे, मगर किसी कारणवश शशि कपूर ने फिल्म के लिए मना कर दिया था। इसके बाद ऋषिकेश दा ने राज कपूर को आनंद के किरदार के लिए सोचा, लेकिन उस समय राज कपूर बीमार चल रहे थे। इस रोल के लिए किशोर कुमार भी ऋषि दा की पसंद कहलाए गए। साथ ही उन्होंने यह कहानी एक बार अभिनेता धर्मेंद्र जी को सुनाई थी। कहानी सुनकर धर्मेंद्र बहुत खुश हुए थे और उन्होंने कहा कि यह फिल्म तो मैं ही करूंगा। कुछ दिनों बाद अखबार में छपा कि आनंद फिल्म के हीरो राजेश खन्ना होंगे। फिर क्या था

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। कार्यक्रम चल रहा है फिल्मी किस्से एपिसोड 4 दीपक कश्यप के साथ, और बात हो रही है आनंद मूवी के बारे में। और अब वक्त है आखिरी किस्से का। हमने हमेशा ललिता पवार जी को नेगेटिव रोल में ही देखा था। ज्यादातर मूवी में उन्हें कठोर जालिम सास का या सौतेली माँ का रोल दिया जाता था, लेकिन ऋषि दा अलग किस्म के डायरेक्टर थे। उन्होंने हमेशा अपनी फिल्म में कुछ नया दिखाने या पेश करने की कोशिश की, और इस फिल्म में ललिता पवार ने कठोर लेकिन नरम दिल नर्स डीसा की भूमिका निभाई। यह पहली बार नहीं था कि ऋषि दा ने पावरफुल पवार को एक दयालु कैथोलिक के रूप में पेश किया था। उन्होंने ऋषि दा को वैम्प्स यानी फीमेल विलियन सिंपती वाले रोल में कास्ट करना खूब भाया, जैसे अनुपमा में शशिकला जी और अभिमान में बिंदु जी। साथ ही इस फिल्म की कोई फीमेल लीड नहीं थी। सुमित सान्याल को अमिताभ बच्चन के सामने कास्ट किया गया था, हालांकि उनके लिए कोई गाने की स्थिति नहीं थी, लेकिन ऋषि दा ने एक गाना बनाया क्योंकि वह फिल्म में अपनी पसंदीदा लता मंगेशकर का कम से कम एक गाना चाहते थे। इस तरह संगीतकार ललित चौधरी ने आनंद के लिए कंपोज किया सदाबहार गाना ना जिया लागे ना। अब आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा और आपको छोड़े चले जाऊंगा लता मंगेशकर जी के गाए हुए इस गीत के साथ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमें फीडबैक जरूर दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7056413010 पर। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई फिल्म नए किस्से के साथ। सुनते रहें FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 4, लेखक एडिटर व प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, निर्देशन सेजल पुंज। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: पेश है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला। पेश कर रहे हैं आरजे नरेश शर्मा। एडिटिंग व निर्देशन भारत सोपोरी।
1: हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमको तलाश रही है क्यों तेरी बेताब नजरें, खुद में झांक हम तेरी आंखों में दिखाई देंगे। ओ हां नमस्ते, ये तो मैं कहना भूल ही गया आपसे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। एक खास प्रोग्राम आपके सामने आज लेकर आ रहा हूं। ये रेडियो वितस्ता का वितस्ता गीतमाला नामक प्रोग्राम है। शुरू करने जा रहे हैं हम संगीत का वो सफर जो कुछ समय के लिए आपके सारे दुख, आपकी सारी चिंताएं और आपकी सब परेशानियों को आपके दिलो दिमाग से दूर कर देगा। और अगर कुछ रहेगा ना तो सिर्फ जहन में एक ही नाम, वितस्ता गीतमाला। और इसके साथ होंगी प्रज्ञा गोयल जी की शायरी, मेरी आवाज और रेडियो वितस्ता का साथ। रेडियो वितस्ता के इस विशेष कार्यक्रम से जिसका नाम है वितस्ता गीतमाला पार्ट टू। कांटों भरा है सफर, मेरे साथ चलो। कांटों भरा है सफर, मेरे साथ चलो। ना जाने कब हो गम की सहर, मेरे साथ चलो। मैं अकेले भटक न जाऊं कहीं, अंधेरी है डगर, मेरे साथ चलो। तेरे पथ में तेरे हमराह और भी हैं, तेरे पथ में तेरे हमराह और भी हैं, मैं जानती हूं मगर मेरे साथ चलो। है तुझको नसीब सपनों का बसेरा, मैं मुसाफिर हूं उम्र भर, मेरे साथ चलो। अंधेरी है डगर, मेरे साथ चलो।

उठते उठते एक दिन अभिमान भी उठ जाएगा, उठते उठते एक दिन अभिमान भी उठ जाएगा, जनाजे के पीछे ये सारा सामान भी उठ जाएगा, उठ जाएगा ये शोहरत का लबादा भी एक दिन, इस किराए के घर से ये मेहमान भी उठ जाएगा, रह जाएगा यहां बस कुछ यादों का कारवां, सब मुझी से है ये गुमान भी उठ जाएगा, ये गुमान भी उठ जाएगा।

देखिए साहब, लोग किस तरह से किसी को भूलने की कोशिश करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं। एक कवियत्री ने अपनी कलम से क्या खूब इसका जिक्र किया है, और ये कवियत्री कोई और नहीं प्रज्ञा गोयल जी हैं। प्रज्ञा जी कहती हैं कि पानी पर पानी से लिखकर नाम मिटाती हूँ तेरा, पानी पर पानी से लिखकर नाम मिटाती हूँ तेरा, भुला दिया है यह कहकर जिक्र दोहराती हूँ तेरा, तेरे नाम का सिरहाना अब भी खाली रखती हूँ, तेरे नाम का सिरहाना अब भी खाली रखती हूँ, एक करवट से सोती हूँ अब भी राह तकती हूँ, दिल के पिंजरे में प्रेम का पंछी संभाल रखा है, तू लौटेगा एक दिन अब भी ये वहम पाल रखा है, तू लौटेगा एक रोज अब भी ये वहम पाल रखा है।

गीत मेरे, जब तेरा नाम गुनगुनाए तो चले आना। गीत मेरे तेरा नाम जब गुनगुनाए तो चले आना, खुली आंखें ख्वाब तेरा दिखाएं तो चले आना। पत्तों की साए साए में जब तेरे कदमों की आहट हो, फूलों में भी तेरे सांसों की महक हो तो चले आना। ये गलियां कूचे आशियाना आज भी जानते हैं तुझे, ये गलियां कूचे आशियाना आज भी जानते हैं तुझे, मेरे हर नासूर का मरहम हकीम मानते हैं तुझे। वक्त रुखसत की जो खबर मिले तो चले आना, गीत मेरे जब तेरा नाम गुनगुनाए।

अब देखिए, प्यार की जहां तक बात है, किसी को प्यार नहीं मिलता तो साहब किसी को दिलदार नहीं मिलता। इसलिए एक सुनहरी कलम से लिखा गया, जमाने भर में ढूंढो मगर अब प्यार नहीं मिलता, जमाने भर में ढूंढो मगर अब प्यार नहीं मिलता। दुनिया भुला बैठे हैं इस चाहत में, वो दिलदार नहीं मिलता। मेरी शख्सियत को वो जमाने भर में खोजो मगर, मेरी शख्सियत को जमाने भर में खोजो मगर, मैं वो हस्ती हूँ जिसका किसी से भी किरदार नहीं मिलता। मुद्दत तक डोले हम मुनसिफ के निगारी, मुद्दत तक डोले हम मुनसिफ की निगाह लिए, जब आईना देखा तो खुद से बड़ा कोई गुनहगार नहीं मिलता। अपने होठों की हंसी उनके लबों पर सजाए, अपने होठों की हंसी उनके लबों पर सजा आए, मगर जब दर्द हमको होता है तो कोई भी हिस्सेदार नहीं मिलता, कोई भी हिस्सेदार नहीं मिलता।

0: कभी कभी।
1: जो कहीं ना मिल सका उसी को ढूंढती हैं, जो कहीं ना मिल सका उसी को ढूंढती हैं, बेचैन सांसें बस सुकून को ढूंढती हैं।

तन्हाइयों में कुछ दर्द पुराने निकले, तन्हाइयों में कुछ दर्द पुराने निकले, कुछ सिसकियां कुछ अश्क बहाने निकले, आज फिर प्रेम से पढ़ा उनको, बंद संदूक से जो खत पुराने निकले। ऊपर लिखा था प्रियतमा, नीचे लिखा था आपका, ऊपर लिखा था प्रियतमा, नीचे लिखा था आपका, इन दोनों के बीच मेरे तो जमाने निकले, इन दोनों के बीच मेरे तो जमाने निकले। रोना कौन सुनता है कहो किसको सुनाए, रोना कौन सुनता है कहो किसको सुनाए, दर्द को ही गीत बना महफिल को सुनाने निकले, दर्द को ही गीत बना महफिल को सुनाने निकले।

गजल तू कहे तो मैं तेरे नाम लिखता जाऊं, तो अगर दिन को रात कहे तो मैं रात लिखता जाऊं। तू बेचैनी, तू सकून, तू खलिश और तू ही करार। तू बेचैनी, तू सकून, तू खलिश और तू ही करार। तू अगर कहे तो मैं तुझको ही उद्गार लिखता जाऊं। तू मेरे ख्वाबों में, तसव्वुर में, बात में, रात में। तू अगर कहे तो मैं तुझी को सारी कायनात लिखता जाऊं। मंजिल की किसे तलाश है अगर हम सफर है तू, मंजिल की किसे तलाश है अगर हम सफर है तू। बस तेरा साथ बना रहे, मैं क्यों ना इस सफर को ही सौगात लिखता जाऊं। मैं क्यों ना इस सफर को ही सौगात लिखता जाऊं।

0: हम प्रज्ञा गोयल जी की आवाज आपको सुनाते हैं। आप सुनिए प्रज्ञा गोयल जी की आवाज। तो ये हैं प्रसिद्ध कवियत्री प्रज्ञा गोयल।
1: नमस्कार, मैं प्रज्ञा गोयल मुजफ्फरनगर से रेडियो विकसता के सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मैं श्री भारत सपूरी जी एवं श्री नरेश शर्मा जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी भावनाओं जो रचनाओं के रूप में प्रकट होती हैं अपने गीतमाला कार्यक्रम में स्थान दिया। एक बार पुनः रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय हिंद।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 2। पेश कर रहे हैं आरजे नरेश शर्मा।
0: वैसे तो कहते हैं कि किसी खास चीज के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि जब तक एक खास जुनून के लिए सब कुछ ना छोड़ा जाए ना, तब तक वो मकसद हासिल नहीं होता जिस मकसद के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है। तो जिनकी शायरी आप सुन रहे थे ना इस कार्यक्रम के बीच में, प्रज्ञा गोयल जी, उन्होंने अपनी कलम के लिए, अपने शब्दों को एक मूर्त देने के लिए, अपने एहसासों को आप तक पहुंचाने के लिए, सच मानिए, बहुत कुछ छोड़ दिया।

आप सुन रहे थे रेडियो वितस्ता का ये विशेष कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला। और अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा अगला प्रोग्राम लेकर आपके साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला, पेश किया आरजे नरेश शर्मा ने। एडिटिंग व निर्देशन भारत सोपोरी का था। इसको रिकॉर्ड किया गया था स्टूडियो रेडियो वितस्ता अंबाला कैंट में। आप लोग अपनी राय जरूर हमें दें हमारे मेल आईडी पे, जो है radiovitasta@gmail.com, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9416013010। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अम्बाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

तो ये लगता है कि यहाँ

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है आंखों ही आंखों में।

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली,

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: नगमों की मिठास और संदेश में छुपा अपनों का एहसास, हवाओं में गुलती ये कैसी सदा है, दिलों के तार जोड़े ये संगीत की दुनिया बड़ी जुदा है। रेडियो विदस्ता के सभी प्यारे श्रोताओं को भारत सोपोरी का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार,
1: और मेरे यानी आपके अपनी आरजी किरणी की तरफ से भी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हमारे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से भी प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब संगीत का साथ हो और अपनों की बात हो तो वक्त खुद ब खुद हसीन हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा किरणी, और आज की दोपहर तो कुछ ज्यादा ही खास है। हमारे श्रोताओं के मन में एक शिकायत भी होगी और चेहरे पर एक मुस्कान भी, क्योंकि पिछले दो हफ्ते से आप सब हमारे आर्काइव्स से कार्यक्रमों का आनंद ले रहे थे।
1: जी हाँ, हमें बहुत से मैसेज मिले हैं जिसमें हमारे श्रोता पूछ रहे थे कि नया एपिसोड कब आ रहा है। दोस्तों, आपके इस बेताबी को देखकर हमें एहसास हुआ कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। दो हफ्तों तक आपने पुरानी यादों को ताजा किया, लेकिन आज
0: इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। पूरे दो हफ्ते के लंबे वक्त के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल ताजा और नया कारवा आपके अपने पसंदीदा शो का।
1: जी हाँ, और जब बात हो आपकी फरमाइश की तो माहौल में एक अलग ही मिठास घुल जाती है। लेकिन हमारे इस शो की एक बहुत खास बात है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती है ना?
0: बिल्कुल, हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ 90.0 मेगाहर्ट्ज FM पर सिर्फ एक के बाद एक गाने चलाकर आपका मनोरंजन नहीं करते। हमारे लिए आपकी भेजी हुई फरमाइश महज एक मैसेज नहीं है, हम हर एक फरमाइश को आपके दिल की आवाज समझते हैं।
1: कितनी खूबसूरत बात कही आपने, जब कोई दूर बैठा दोस्त आपने किसी अपने के लिए कोई नगमा चुनता है तो उसमें बहुत सी भावनाएं छुपी होती है। हमारा काम बस यही है कि आपकी उस अनकही भावना को, आपके दिल की उस आवाज को दूसरों तक पहुंचाए,
0: और रेडियो की इन जादुई तरंगों के जरिए दिलों को दिलों से जोड़ते चले जाएं, क्योंकि संगीत ही तो वो भाषा है जो हर दूरी को मिटा देती है।
1: तो चलिए दोस्तों, अब बातों का सिलसिला यहीं थोड़ा थामते हैं और आपके दिल की बातें संगीतमय अंदाज में शुरू करते हैं। अपनी अपनी फरमाइशों की डायरी खोल लीजिए और बहने दीजिए इन सुरों को अपने घर आंगन में। भारत सोपोरी और आरजे गिरनी के साथ शुरुआत करते हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम की और लेते हैं पहली फरमाइश। पहली फरमाइश आई है फिल्म लाखों में एक के गाने की, जिसके बोल है चंदा ओ चंदा, और इस गाने को आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। ये फरमाइश भेजने वाली श्रोता है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी पलोमा व डॉक्टर ईशानी, और ये फरमाइश आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर से। और साथ में ही इसी गाने की फरमाइश हमारे पास भेजी है कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सईद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम, अदीब और अन्य परिवार वाले। लीजिए पेश है इन सब का पसंदीदा गीत।

जी हाँ श्रोताओ, लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है नल्लेश्वर नगर नरवील महाराष्ट्र से। भेजने वाली श्रोता है PS नहावकर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म बम्बई का बाबू से गीत। गीत के बोल है दीवाना मस्ताना हुआ दिल। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी ने। PS नहावकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

चलिए अब सुनते हैं आपकी पसंद का अगला नगमा, जो है फिल्म चितचोर से। इस गीत के बोल है आज से पहले आज से ज्यादा, और इसको अपनी आवाज से सजाया है यशोदास ने। और ये फरमाइश हमारे पास आई है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से, और भेजने वाली श्रोता है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। पेश है आपके पसंद का ये फरमाइशी गीत।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है समस्तीपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता है मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से, सोनम सिंह और अनामिका सिंह। ये सभी सखियां सुनना चाहती हैं फिल्म आंखें से गीत। गीत के बोल है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

और अब पेश है आपकी फरमाइश का अगला गीत जो फिल्म तराना से है और गाने के बोल है हम तुम दोनों साथ में भीग जाएंगे। और इस गाने की फरमाइश हमारे पास आई है दयाल बाग अम्बाला से और भेजने वाली श्रोता है हनी और अनिल और इस गाने को अपनी आवाज से सजाया है उषा मंगेशकर और शैलेंद्र ने। लीजिए पेश है इनका पसंदीदा गीत।

जी श्रोताओं, आपको सुनाते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास अंबाला छावनी से ही आई है और भेजने वाली श्रोता है उषा कौशल जी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म अजनबी से गीत। गीत के बोल है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार साहब ने। आइए सुनते हैं इनका ये पसंदीदा नगमा।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है चंद्रूप नगर अम्बाला कैंट से और भेजने वाले श्रोता है मदन गोपाल सैनी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म इजाजत का गाना जिसको अपनी आवाज से सजाया है आशा भोसले ने और गाने के बोल है खाली हाथ शाम आई है। पेश है इनका पसंदीदा गीत।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है कोलकाता से और भेजने वाले श्रोता है विशाली, राजीव, विराज और मिनी। ये सब सुनना चाहते हैं एल्बम सॉन्ग तुझे लगे ना नजरिया, और इस गाने को अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया है सोनू निगम ने। लीजिए पेश है इनका ये पसंदीदा गीत।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से भेजने वाले श्रोता है आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और हैप्पी आनंद। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दीवार से गीत। गीत के बोल है मैंने तुझे मांगा। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोंसले ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी दोस्तों का ये पसंदीदा नगमा।

आपकी फरमाइशों का सिलसिला यूं ही जारी है। अब लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है अम्बाला सिटी से, और भेजने वाले श्रोता है शुगन गोडियाल, मीनाक्षी और प्रथम। ये सब सुनना चाहते हैं फिल्म ब्लैक मेल का गाना, जिसके बोल है पल पल दिल के पास, और इस गाने को अपने खूबसूरत आवाज से सजाया है किशोर कुमार जी ने। लीजिए सुनते हैं ये यादगार गीत।

सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है झारखंड से। भेजने वाले श्रोता है आकाश, देवू, रिया, प्रिया, शानू, नूतन, मुकेश और उनके अन्य दोस्त। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सावन को आने दो से गीत। गीत के बोल है तुम्हें गीतों में डालूंगा सावन को आने दो। इस गीत को आवाज दी है यसुदास ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है अरुणाचल प्रदेश से, भेजने वाली श्रोता है सुको। ये एक पंजाबी गाना सुनना चाहती है जिसके बोल है बत्तियां बुझाए रख दी। लीजिए पेश है ये गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप किसी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत की या हरियाणवी या पंजाबी गीत की फरमाइश करना चाहते हैं तो आप अपनी फरमाइश हमें भेजिए हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। आपको लिखना होगा अपना नाम, जगह कहां से आप लिख रहे हैं, अपने सभी दोस्तों के नाम जो इस गीत को सुनना चाहते हैं, और भेजिए हमारे नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। सुनाते हैं आपको अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है धनोरी तेली वाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। ये सुनना चाहते हैं फिल्म चरस से गीत। गीत के बोल है आजा तेरी याद आई। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए प्रस्तुत है इनकी पसंद का ये मनमोहक गीत।

0: मर जाई किया जा तेरी
1: जी। पेश है आपकी पसंद का एक और गीत जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है अरुणाचल प्रदेश से और भेजने वाली श्रोता है माही। ये सुनना चाहती है फिल्म जुर्म का गाना जिसके बोल है जब कोई बात बिगड़ जाए और इस गाने को खूबसूरत अंदाज में गाया है कुमार सानू ने। लीजिए सुनते हैं इनका पसंदीदा गीत।

0: श्रोताओं, ये था आज का हमारा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, और पेश करते हैं आखिरी फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला छावनी से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधु, उनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधु, जसबीर सिंह संधु, वरनीत कौर, अवनीत कौर और सारा संधु परिवार। ये सुनना चाहते हैं एक हरियाणवी गीत, फिल्म का नाम है चंद्रावल और गीत के बोल है जीजा तू काला मैं घोरी घनी। इसी फरमाइश के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर। नंबर बता देते हैं आपको एक बार फिर, जो है 7056413010, 7056413010। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।
1: और इसी के साथ आज की संगीत यात्रा को यही विराम देते हैं। कुछ लम्हे रह जाएंगे यादों में, कुछ सुर दिल के जज्बातों में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: और मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: 90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगा हर्ट्स पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
3: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: है, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सब

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9। पेश करेंगे आरजे किरणी। आज का कार्यक्रम आधारित है बॉलीवुड के मशहूर लेखक आनंद बख्शी पर। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपुरी का।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी और लेकर आई हूं सुनहरे पल का एक नया एपिसोड। आज हम उस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के दिल की धड़कन बन गए थे, एक शख्स जो अपने कलाम के जादू से हर दिल को छू गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आनंद बख्शी साहब की, जिन्होंने प्यार, दोस्ती, जुदाई और जिंदगी के हर पहलू को अपने गीतों में पिरोकर अमर कर दिया। उन्होंने बस लिखा ही नहीं, जिंदगी के जज्बात को महसूस किया और दुनिया तक पहुँचा दिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मिट्टी से उठकर सितारे छूने के जज्बा, उसी का नाम है आनंद बख्शी। वो कलाम के सिपाही, जज्बात के सौदागर, जिन्होंने हर दिल की बात अपने गीतों में बयान की।

आनंद बख्शी का जन्म रावलपिंडी में एक ब्राह्मण परिवार में 21 जुलाई 1930 को हुआ। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय उनका पूरा परिवार भारत आ गया और दिल्ली में रहने लगा। उनकी मां उन्हें प्यार से नंद पुकारती थी और पिता उन्हें प्यार से अजीज या अजीजी और रिश्तेदार नंदो कहते थे। बख्शी परिवार चिट्टियां हिटियां मोहल्ला कुतुबद्दीन रावलपिंडी में एक 3 मंजिला घर में रहता था। इस घर को दरोगा जी का घर या दरोगा जी की कोठी के नाम से जाना जाता था। नंद का नाम रावलपिंडी के उर्दू मीडियम और उसके बाद कैम्ब्रिज कॉलेज में लिखा दिया गया। उर्दू मीडियम से पढ़ाई करने के बाद उनका नाम जो आनंद प्रकाश था।

14 साल की उम्र में आनंद बख्शी कराची में रॉयल इंडियन नेवी में शामिल हो गई। वे 1944 में रॉयल इंडियन नेवी में कराची बंदरगाह पर बॉय के रूप पर भर्ती हुए और 5 अप्रैल 1946 तक वहां रहे। इसके बाद वो आर्मी में शामिल हुए। वो 2 अक्टूबर 1947 का दिन था जब भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे की त्रासदी का शिकार ये परिवार रातों रात रिफ्यूजी की तरह भारत पहुंचा। बख्शी परिवार एक डकोटा विमान से रावलपिंडी से सुरक्षित दिल्ली आ गया, क्योंकि आनंद के बाबूजी पुलिस के सुपरिंटेंडेंट के साथ पंजाब की जेलों लाहौर और रावलपिंडी के इंचार्ज थे।

नंद की उम्र 17 बरस की थी जब 12 अप्रैल 1950 को वो मुंबई आ गए थे और उसी साल उन्होंने गायक और लिरिसिस्ट के तौर पर गाना और लिखना शुरू कर दिया। भारत पहुंचने के बाद वो भारतीय फौज में बतौर आनंद प्रकाश शामिल हो गए। जब 1947 से 1950 के बीच फौज में नौकरी करते हुए आनंद प्रकाश ने पहली बार कविताएं लिखना शुरू किया तो उन्होंने कविताओं के नीचे दस्तखत किए आनंद प्रकाश बख्शी। आनंद प्रकाश फिल्मों में बतौर गायक अपनी पहचान बनाने की हसरत रखते थे पर दुनिया ने उनके लिखे गीतों को इस कदर पसंद किया कि वो एक मशहूर गीतकार बन गए। हालांकि उन्होंने अपने लिखे कई गीतों को आवाज भी दी। जगत मुसाफिर गाना, लगा है अनजाना और बागों में बहार आई गीत इन्हीं की आवाज में फिल्माया गया है।

1956 में आनंद प्रकाश बख्शी ने अपनी मर्जी से फौज की नौकरी छोड़ दी। अब उनकी आंखों में बस फिल्मी दुनिया में अपने नाम की पहचान कायम करने की एक जिद सी सवार हो चुकी थी। गीतकार बनने की इस जिद के साथ भूतपूर्व फौजी के रूप में उनके पास कैप्टन वर्मा की सिफारिश की चिट्ठी, करीब 60 कविताओं का संग्रह और उनके गुरु बिस्मिल सईदी के साथ के तौर पर एक मजबूत हौसला भी था। बख्शी साहब का इरादा पक्का था। उन्होंने तय कर लिया था कि मैं एक कलाकार बन जाऊंगा, फिर मैं टैक्सी चलाऊंगा, पर मैं खाली हाथ यहाँ से वापस घर नहीं लौटूंगा। उस वक्त तक उनकी शादी भी हो चुकी थी।

आनंद बख्शी मुंबई में काम की तलाश में आ तो गए, लेकिन यहाँ रहने के लिए उनके पास कोई मुकम्मल जगह नहीं थी, इसलिए सबसे पहले वे दादर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रहने लगे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने दादर गेस्ट हाउस तुलसी पाइप रोड में एक कमरा किराए पर ले लिया। इसके बाद वह खार पश्चिम के होटल एवरग्रीन में रहने लगे। इन दिनों वे सारा दिन बस गाने ही लिखते रहते थे। उनके आशियाने के आसपास कई उस वक्त के नामचीन संगीत कलाकारों के भी घर थे, जिसमें से सचिन देव बर्मन खार में रहते थे, जबकि बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और उनकी पत्नी उसी होटल एवरग्रीन में ही रहते थे। काम की तलाश में भटक रहे आनंद बख्शी अपनी कविताएं और गाने गाकर आसपास के लोगों को अपनी कला से खुश करते थे। शब्दों के जादूगर आनंद बख्शी को माँ सरस्वती से विशेष आशीर्वाद मिला था। यही वजह थी कि केवल मात्र 8 मिनट में सुपर हिट हुए गानों को लिख दिया करते थे। आनंद कभी लिरिसिस्ट बनना ही नहीं चाहते थे, दरअसल वो गायक बनने का सपना लिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि उनकी मंजिल कहीं और ही थी। उन्होंने गाने लिखने शुरू किए और अपने शब्दों का जादू चलाकर करोड़ों लोगों का दिल जीता।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
2: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना।

0: गीतकार एवं गायक आनंद बख्शी अपनी सफलता का श्रेय भगवान दादा को देते हैं। उनका इस बारे में कहना था कि जब मैं पहली बार पर्दे पर अपना नाम देखा तो खुशी के मारे मेरी आंखें भर आई। आज अगर मैं एक कामयाब गीतकार माना जाता हूं तो वो भगवान दादा की वजह से है। उन्हें अपना पहला ब्रेक भगवान दादा द्वारा अभिनीत ब्रिजमोहन की फिल्म भला आदमी 1958 में गीत लिखने से मिला। उन्हें 4 गानों के लिए 150 रुपए का भुगतान किया गया था। उन्होंने इस फिल्म में संगीत निर्देशक निसार बाजमी के लिए 4 गाने लिखे। इस फिल्म में उनका पहला गाना धरती के लाल ना कर इतना मलाल था, जिसे 9 नवंबर 1956 को ऑल इंडिया रेडियो इंटरव्यू में उनकी अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म के पोस्टर में उनका नाम गलती से बख्शी की जगह बख्शी लिख दिया गया और इस तरह से वह फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा के लिए आनंद बख्शी की जगह आनंद बख्शी हो गई।
1: रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक जाना, जरा रुक जाना।

आनंद बख्शी ने 1962 से लेकर 2002 तक करीब 600 से ज्यादा फिल्मों के लिए तकरीबन 3300 से ज्यादा गाने लिखे। उनके गानों के बोल में जो जादू है वो आज भी लोगों के दिमाग पर चढ़ा हुआ है। आनंद बख्शी के गानों में भले ही खूब सादगी हो लेकिन वो असल जिंदगी में बहुत ही शरारती हुआ करते थे। एक दिन उन पर उनकी शरारत काफी भारी पड़ गई थी। आनंद ने इंडस्ट्री के मशहूर और बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर के साथ काम किया। हालांकि उनकी जोड़ी आरडी बर्मन के साथ खूब जमी। उन दोनों ने मिलकर कई शानदार गाने इस बॉलीवुड को दिए। फिल्म एक दूजे के लिए के गाने तेरे मेरे बीच में, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ओम शांति ओम, आदमी मुसाफिर है, हम तुम्हें कमरे में बंद हो, जैसे अनगिनत गीतों को इस जोड़ी ने मिलकर सजाया। आनंद बख्शी को रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म फेयर अवार्ड के 40 नॉमिनेशन मिले। वहीं 4 बार इस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त 2000 में जी सेने अवार्ड, IIFA अवार्ड 2000 में मिले।

मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में। ये संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए लिखा बख्शी जी का पहला गाना था और 29 जुलाई 1963 को रिकॉर्ड हुआ था। किशोर कुमार ने इसे अपने सबसे पसंदीदा गानों में शामिल किया था। पूरे देश में हिट हुई उनकी फिल्म थी जब जब फूल खिले, जो 1965 में आई थी। इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर आनंद बख्शी की सुपरहिट फिल्में छाती चली गई। कुछ फिल्मों के नाम है फर्ज, राजा और रंक, तकदीर, जीने की राह। आराधना वो फिल्म है जिससे राजेश खन्ना के स्टारडम का रास्ता तैयार हुआ और उसके गीत भी आनंद बख्शी ने ही लिखे थे, जो सुपरहिट साबित हुए। आनंद बख्शी के लिरिक्स की नजाकत और खूबसूरती के चलते लोग उन्हें शब्दों का बाजीगर भी कहा करते थे। उन्होंने अपने 7 दशक के करियर में बॉलीवुड को करीब 4000 से अधिक गाने दिए। इन्हें लिखे गीतों के बोल इन्हें सरल और भावना प्रधान होते थे कि आम आदमी की रूह को छू लेते थे। हर मानवीय संवेदना के ऊपर अलग अंदाज के साथ इनके लिखे गीत सुनने को मिल

एक के बाद एक हिट फिल्में आती चली गई। इसके बाद गीतकार आनंद बख्शी फिल्मी दुनिया में बतौर गीतकार एक बड़ा नाम बन चुके थे। इन्होंने रोशन, एसडी बर्मन, एस मोहिंदर और नौशाद और आने वाले 45 सालों में तकरीबन 95 संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने कुल 303 फिल्में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, 99 फिल्में राहुल देव बर्मन के साथ, 34 फिल्में कल्याण जी आनंद जी के साथ और 14 फिल्में सचिन देव बर्मन के साथ मिलकर फिल्मों में जमकर अपनी पारी खेली। आनंद बख्शी अपने आखिरी समय में दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। दरअसल उन्हें स्मोकिंग की आदत थी जो उनकी मौत की वजह बनी। आनंद बख्शी ने अपना आखिरी गाना फरवरी 2002 में लिखा। ये गाना निर्देशक सुभाष गई और संगीतकार अनु मलिक के लिए था। ये गाना था बुले शाह तेरे इश्क नचाया। उस वक्त वो बुखार में थे, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। उन्हें 3-3 कंबल उड़ाए गए थे। कमजोरी और बुखार की वजह से वो कांप रहे थे। अस्थमा की वजह से उनकी सांस तेज तेज चल रही थी। 30 मार्च 2002 को आनंद बख्शी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गए अनगिनत बेहतरीन गाने जिनके जरिए वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।

तो दोस्तों, आज का ये सफर हमारे साथ यहीं तक का था। जैसे आनंद बख्शी के लिखे हर लफ्ज में एक कहानी छिपी होती थी, वैसे ही हमारी ये छोटी सी मुलाकात भी एक याद बनकर आपके दिल में रह जाएगी। आपने हमारे साथ ये पल बिताए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जैसे उन्होंने लिखा था, जिंदगी की राहों में कुछ पल हमेशा याद रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9। पेश किया आरजे किन्नी ने और आज का कार्यक्रम आधारित था लिरिसिस्ट आनंद बख्शी जी पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, निर्देशन व एडिट किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: भारतीय फिल्म इतिहास में कुछ दशक ऐसे हुए हैं जिन्हें किन्हीं खास कलाकारों की वजह से याद किया जाता है। अगर हम 1960 के दशक की बात करें तो यह दशक राजेंद्र कुमार के कारण याद किया जाता है, जिन्हें इस दौर में अपनी सुपरहिट फिल्मों की वजह से जुबली कुमार का नाम दिया गया था। उस दौर की हर अभिनेत्री की इच्छा रहती थी कि उसे राजेंद्र कुमार के अपोजिट किरदार निभाने का मौका मिले।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे

राजेंद्र कुमार ने फिल्मों में एचएस रवेल के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। एचएस रवेल ने ही आगे चलकर राजेंद्र को लेकर फिल्म मेरे महबूब का निर्माण किया, जो उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी।

फिल्म निर्माण के गुर सीखने के दौरान ही राजेंद्र कुमार के मन में अभिनय यानी एक्टिंग की इच्छा जागृत हुई। इसके बाद एक एक्टर के तौर पर पहली बार उन्हें दिलीप कुमार के साथ फिल्म जोगन में एक छोटा सा किरदार निभाने को मिला था। यहीं से वो लगातार कामयाबी हासिल करते गए और 1956 में उन्हें फिल्म आवाज में मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने महबूब खान की मदर इंडिया में एक अच्छे बेटे का किरदार निभाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा उन्हें। यह सिलसिला जारी रहा। 1959 में गूंज उठी शहनाई ने उन्हें एक सुपरस्टार का दर्जा दिलाया।

अगले ही साल उन्होंने कानून और धूल का फूल जैसी फिल्में दी, जो लगभग गूंज उठी शहनाई के समय में ही रिलीज हुई थी। वो हमेशा अपने किरदारों के साथ प्रयोग करने के इच्छुक रहते थे, मगर फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें एक अलग तरह की इमेज में बांधकर रख दिया। 60 के दशक में उन्होंने आस्क पंछी, ससुराल, हमराही, दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला, जिंदगी, संगम, आरजू, सूरज जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी।

उनकी सफलता के चढ़ाव के इस दौर के बाद एकदम इसमें उतार आया और उनकी अमन झुक गया आसमान, पालकी, साथी और शतरंज जैसी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप साबित हुई। इसी दौरान उन्होंने गवार, गांव हमारा शहर तुम्हारा और तांगे वाला जैसी औसत दर्जे की फिल्में की, मगर उन्हें पहले जैसी कामयाबी नहीं मिली।

70 के दशक में जब राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में छाई हुई थी, तब राजेंद्र कुमार अभिनीत और राजकुमार कोहली की फिल्म गोरा और काला आई और सुपरहिट साबित।

सन 1980 के बाद राजेंद्र कुमार ने अपना पूरा ध्यान अपने बेटे कुमार गौरव का करियर बनाने के लिए दिया। 1981 में उन्होंने अपने बेटे को लेकर फिल्म लव स्टोरी का निर्माण किया जो सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव को लेकर नाम, जुरत और फूल जैसी फिल्मों का निर्माण किया, मगर कुमार गौरव अपने पिता की विरासत को आगे न ले जा पाए। इसका दुख राजेंद्र कुमार को साल-साल तक

राजेंद्र कुमार अपने पूरे जीवन में शायद ही कभी बीमार पड़े होंगे, पर 1999 में एक दर्दनाक बीमारी के चलते वो इस दुनियाई फानी को अलविदा।

उनके दौर की फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए राजेंद्र कुमार भी उतने ही बड़े ट्रेजेडी किंग थे जितने बड़े ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को माना जाता है।

सुनते रहिए हमारी प्रसारण दिल से। अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे प्रोग्राम्स के बारे में अपनी खूबसूरत राय से हमें नवाजते रहिए। सुनते रहिए हमारी नशरियात दिल से।

रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।

क्या आप जानते हैं मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन था और महजबीन सबसे छोटी बेटी थी खुर्शीद और मधु के बाद। इनके वालिद अली बख्श गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। महजबीन की पैदाइश के फौरन बाद अपनी गुर्बत की वजह से अली बख्श ने अपनी इस छोटी लड़की को किसी मुस्लिम घराने के हवाले किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद महजबीन को वापस अपने पास ले आए। अली बख्श की फिल्मी दुनिया से पहले ही से वाबस्तगी थी। वो शायर थे, हारमोनियम बजाने के अलावा म्यूजिक टीचर भी थे। अली बख्श ने एक छोटा सा रोल अदा किया था, फिल्म थी ईद का चांद। फिल्म शाही लुटेरा के लिए संगीत भी तैयार किया था। प्रभावती देवी अली बख्श की दूसरी पत्नी थी और मीना कुमारी की दादी हेम सुंदरी ठाकुर टैगोर खानदान से ताल्लुक रखती थी। हेम सुंदरी ठाकुर की बेटी यानी अली बख्श की दूसरी पत्नी प्रभावती देवी स्टेज एक्ट्रेस के अलावा उस जमाने की बेहतरीन और उम्दा डांसर थी। अली बख्श के साथ शादी के बाद प्रभावती देवी ने इस्लाम मजहब अपना कर अपना नाम इकबाल

आर्टिस्ट के तौर पे फिल्म फर्जंदे वतन में काम करने का मौका दिया। यह सिलसिला 1940, 1950 और 1952 तक रहा। मीना कुमारी ने 1949 में फिल्म श्री गणेश महिमा और 1950 में फिल्म अल्लादीन में काम किया। मीना कुमारी ने विजय भट्ट की फिल्म बेजू बावरा में काम किया, जो 1952 में रिलीज हुई और यहीं से मीना का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और सन 1953 में मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।

रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं? है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं? ये चांद है या तुम्हारा कंगन? सितारे हैं या तुम्हारा आंचल? हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू? ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है? ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सही हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दे, हाँ हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है

बातें तो यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन आज के दिन को अलविदा कहने से पहले रेडियो वितस्ता हमेशा से ही आप सभी के दिलों के तार से जुड़े रखने और खूबसूरत रंगों से सजाने का प्रयास करता आया है। उम्मीद है आज दिन भर के हमारे कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आए होंगे। आने वाले दिनों में भी हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कार्यक्रम लाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। दिन भर हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दिन भर की भागदौड़ के बाद सुकून के कुछ पल बिताने का समय है। दिन भर के इस प्यारे सफर को अब यहीं विराम देते हैं। खूबसूरत लम्हों और यादों की छाओं में विश्राम देते हैं। रातों की खामोशी को मिले सुकून, बड़े मीठे ख्वाब आपको, इसी दुआ के साथ आज के इस आखिरी रात का सलाम देते हैं। कल सुबह ठीक 5:58 पर फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नए सवेरे और एक बेहतरीन नई शुरुआत के साथ। तब तक मुस्कुराते रहे, अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।